0: दिक्कि कुसके लम वोल
1: ही वोल लाए कुकु खिंग्री मोसा ही खिंग्री मोका
0: तुवस बिली
1: हिपिंदा
0: तुवस तातु
1: हिपिंदा हिपिंदा हिपिंदा काला वजिकानु ना हिकु निगा
0: माती मुनिजुंगा तिजंतुंबुनु तिटका तकानी तिकरिंगानी निस्तोकसेलो
1: कुटीवा निकुटिफिकेला मबाजु
0: मारुंगुला
1: माहुंगु
0: अतोलु न्यामुंक निमंजिकु कचिकच्चेला वाशा
1: अमाहन्येला निउजुंजु गावासा तिकसिकु निसिकु वावासा
0: अतिसिमु निमुजिका के
1: Kuhava, kona lei angi wula himani.
0: 101.6 hiyo na frekwensia hina ka FM.
1: Hi radio Mosambiki, bungana wawena akachikati chonke nika gihitsamela.